0: खाती हला हे तिलियाली हम आला तिले बेले ई खाती हाले हम आला तिले आले खाती हला हे के तिलियाली बा हतिला वेले लो असुत बाना खाना वाली बा हे मेने ले थे बा हतिला दे देला सोए नवतले दिन असुत बाना येशु स्वास के नाम में फले आऊ
1: रे के रामा खातिला रे तेरे बे
0: ई हमला के तिलियाले हम
1: तेरे बे दे दे रे बा हतिला हालेलुया
0: इतेलिया माला माती हाना हेले केती लिहा मेले माती लिया ले ओबने सुधी वेवा स्वामीन वार्स ओबांसी उदाउ करान नेकिने कनाता